0: गए मसकत काल नानक ते मुख उजले केती छुट्टी नाल।
1: श्री वाहिगुरु जी अरदास। एक ओंकार वाहिगुरु जी की फतेह। श्री भगवती जी सहाय। वार श्री भगवती जी की पातशाही दसवीं। प्रथम भगवती समरका गुरु नानक लई त्याय। फिर अंगद गुर ते अमरदास रामदास हुई सहाय। अर्जन हर गोबिंद नू सिमरा श्री हर राय। श्री हर कृष्ण

प्राण के बचैया दूध पूत के देवैया, रोग सोग के मिटैया के दौ मानी महामान हो। विद्या के विचार हो के अद्वै अवतार हो, के सिद्धता की सूरत हो के शुद्धता की शान हो। जोबन की जाल हो के काल हूँ के काल हो, के सत्रन के सूल हो के मित्रन के प्राण हो। शतरतारी शत्रिपत शैल रूप शेतनाथ, शौणी कर छाया बर शत्रिपत गाइया,

न्योली कर्म दूधा तारी विद्या तर ब्रह्मचारी ध्यान को लगावै नैक ध्यान हूं ना पाइए।

जाहे बसेरा अनहद रूप अनहद बानी चरण शरण जय बस भवानी ब्रह्मा विश्रांत नहीं पायो नेत निर्मुख चार पदायो कोट इंद्र उपेंद्र बनाए ब्रह्मा रुद्र पाए खपाए लोक सद खेल जायो बोहराप ही बीच मिलायो दानव देव फरिंदा परा गंधर्व जस जस सुचारा भूत भूख भवान कहानी घड़ घड़ के पट पट की जानी तात माजी जात न पाता एक न काउ नहीं रहता सहस्रव ज्योत के बीच समाना समूह सर्व ठौर पहचाना काल धन काल रूपा लख प्रक अभिगत अधूता जात पाजे चहन वरना अभिगत देव छह भरमा सब को काल सबन को करता रोग शोक दुखन को हरता एक चित जय छिंद आयो काल फांस के बीच ना आयो तो प्रसाद कबित कत हूँ सुचेत भके चेतना कुचार कियो कत हूँ अचित भके सुवत अचित हो कत हूँ भिखारी भके मांगत फिरत भी कहू महादान भके मांगो धन देत हो कहू महाराजन को दीजित अनंत दान कहू महाराजन के छिन छित लेत हो कहू बेदरीत कहू तस विपरीत कहू त्रिगुण अतीत कहू सरगुण समेत हो कहू जिचो गंधर्वर्ग कहू विद्याधर कहू भय किन्नर पिशाच कहू प्रेत हो कहू है हिंदुआ गायत्र कुगुपद जप्यो कहू है तुरका पुकार बांग देत हो दीवान में विराजमान कहूं दान।

विचार विचार को विचार तो कहो निज नार पर नार के निकेत हो कहो वेद रीत कहो तस विपरीत कहो त्रिगुण अतीत कहो सरगुण समेत हो कहो शतधारी कहो विद्या के विचार कहो मारत हारी कहो नार के निकेत हो कहो देववाणी कहो शारदा भवानी कहो मंगला मिडानी कहो श्याम कहो सेत हो कहो धर्म धामी कहो सर्वठोर गामी कहो जति कहो कामी कहो देत कहो लेत हो कहो वेद रीत कहो तस विपरीत कहो त्रिगुण अतीत कहो सरगुण समेत हो कहो जटाधारी कहो कंडित ब्रह्मचारी कहो योग साधि कहो साधना करत हो कहो कान फारे कहो डंडू है पधारे कहो फूक फूक पावन को पृथ्वी पै धरत हो का तुम सिपाही के साथ सिलान को कहो छत्री फका।

निदान को बता दो कहो नृत्यकारी चित्रकारी के निदान हो का तुह पैकु के पीवत पिवावत हो कतु मयकु कहु मद पान हो कहु महासूर है के मार्द मासन को कहु महादेव देवतान के समान हो कहु महादीन कहु द्रव के अधीन कहु विद्यान कहु भूम कहु भान हो कहु अकलां कहु मारत मया कहु पूर्ण प्रजा कहु सोता के सार हो कहु देव धर्म कहु साधना के हरम कहु कुतस्क कर्म कहु धर्म के प्रकार हो कहु पौन हरि कहु विद्या के विचारी कहु योगी यति ब्रह्मचारी नर कहु नार हो कहु छत्रधारी कहु छलाधर छैल भारी कहु छकवारी कहु छाल के प्रकार हो कहु गीत के गवियां कहु बेन के बजियां कहु नृत्य के नचियां कहु नर को आकार हो कहु वेद वाणी कहु कोकी कहानी कहु राजा कहु रानी कहु नार के प्रकार हो कहु बेन के बजियां कहु धेन के चरे कहु लाखन लवे कहु सुंदर कुमार हो सोता किसानों के संतन के प्राण हो के दाता महादान हो के निर्दोखी निरंकार हो निर्जुर्ण रूप हो के सुंदर सर्व के भूपन के भूप हो के दाता महादान हो प्राण के पचैया दूध भूत के दवैया रोग शोक की मिटैया किधो मानी महामान हो विद्या के विचार हो के अद्वैतार हो के सिद्धता के सुरत के सोता के शान हो जोबन के जाल हो के काल हो के काल हो के सतरन के सूल है के मित्रन के प्राण हो कहूँ ब्रह्म बाद कहूँ विद्या को विखात कहूँ नाद को निनाद कहूँ पूरा नपगत हो कहूँ वेद रीत कहूँ विद्या के प्रतीत कहूँ नीता उनीत कहूँ जालो सी जगत हो पूर्ण प्रताप कहूँ एकांति को जाप कहूँ ताप को ताप कहूँ जोग देडगत हो कहूँ पर देत कहूँ छल सो छिनाय लेत सर्व काल सर्व ठार एक से लगत हो तो प्रसाद सवैये श्रावक शुद्ध समूह सिदान के देख प्रयोग घर योग यति के समूह अनेक मति के सारी देश को देख रहे मत को न देखे पानपति के श्री भगवान की भाई कृपा हो देख करते बिन एक रति के माते मतंग जरे जर संग सुरंग सवारे कोट तुरंग कुरंग से खुदत पवन के गौन को जात निवारे भारी भुजन के भूप भले बेद न्यावासी न जात विचारे एते भय तो कहाँ भय भूपत अंत को नागे ही पाए पधारे जीत फिर सब देश जान को बाजे ढोल मृदांगन गारे गुंजत गुड़ गजान के सुंदर हिंसत ही है राज हजारे भूत भय के भवन के भूपत कौन करे नहीं जात विचारे श्रीपत श्री भगवान भजे बिना अंत को अंत के धाम सिधारे तीरथ नंद आदम दास संजम ने मने को सेखा है वेद पुराण कतेब गुना जिमीन जमा सबान के पेखा है पवन हार जति जत धार सब ऐसो विचार हजार क देखा है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति बिन एक ना लेखा है शोध सिपाह दुरंत दुबाह साज स्नाह दुर्जान दिलाएंगे भारी गुमान भरे मन मायकर पर्वत पंग हल्ले नहलाएंगे तुर अरीन मरोर मवासन माते मतंगन मान मिलांगे श्रीपद श्री भगवान कृपा बिना त्याग जहान निदान चलांगे वीर पार बड़े बरे रब चारे सार की धार भजैया तोर देश मृद मौसन मातक जान के मान मलिया गाड़े गडान के तोड़न हार सुबातन ही चकचार रवैया साहेब श्री सब को सिर नायक जाचक अनेक सो एक दिवैया दानो दे फल साचर भूत भुग फान जपांगे जीवित जल मैथन में पलही पल में सब था बतवाएंगे पुन प्रतापन बाढ़ जाए धुन पापन के बुपुंज खपाएंगे साध समूह प्रसन्न फिरा जाग सात्र सभा और लोक छपांगे मानो इंद्र गजेंद्र आदि ज्ञान तुलों को राज कराएंगे कोट स्नान जायक दान एक सोमवार साज बनाएंगे ब्रह्म सर्व विष्णु

काहले पाहन पोन धरो सिर काहले लेंगर लड़कायो काहु लखियो राजी सा मैं काहु पुछाओ को शीश निवायो को भुतान को पूजत है पस को मृतान को पूजन तायो कूर क्रिया और जोस

प्रवीण अकलंक रूप अपार अनछे तेज उदार अनभिज रूप दुरांत जगत भगत महांत तेरी भुव भांत चार चार निधान अकलंक रूप अपार सब लोग सुख विदार कल काल कनम भीन सब करम धर्म प्रवीण अनखंड अतुल प्रताप सब थापियो जे थाप अनखेद भेद अछेद मुखचार कावत भेद जय निर्गम कहांत मुखचार भगत ब्यांत अनभिज अतुल प्रताप अनखंड अमित अथाप जय किन जगत प्रसार रचियो विचार विचार आनंद रूप खंड अतुल प्रताप प्रचंड जे अंड ते ब्रह्मांड कीन चौदह खंड सब कीन जगत प्रसार व्यक्त रूप उदार ये कोट निरपार के ब्रह्म विषण विचार हे राम कृष्ण रसूल बिन भगत को ना कबूल कई सिंध बिंद गेंद्र कई मच कज फणेन्द्र के देवाद कुमार के कृष्ण विष्ण अवतार केन्द्र बार बहार के वेद अमुख चार के रुद्र छुद स्वरूप कई राम कृष्ण अनूप के कोप का भणांत के वेद भेद कहांत के शास्त्र सिमृत बखान को कत थी सो पुराण के अग्निहोत्र क्रांत के उर्द ताप दुरांत के उर्द भाव संन्यास को जोग भे सुदास क्यों न्यूली कर्म क्रांत को पवन हार दुरांत को तीर दान पार को जग कर्म उदार को अग्निहोत्र अनूप को न्याय राज विभूत को शास्त्र सिमृत रीत को बेस विपरीत के देश देश प्रांत के एक ठोर स्थान्त को कर जल मह जाप को सहतन प्रताप को वास बने क्रांत को ताप तने शांत को ग्रेस धर्म पार को राजनीज उतार को रोग्रत अभरम को कर्म करता कर्म को शेख ब्रह्म स्वरूप को निद्राज अनूप को रोग सुख विहीन को एक भगत अधीन को रंग राजकुमार को वेद व्यास अवतार हे ब्रह्म वेद टांत के एक शेख नाम विश्रांत बैराग कहूँ संन्यास को फिरत रूप उदास सफर करम फुकड़ झांस।

इहारी उहारी जिमी हरी जमा हरी अलेख हरी अभेख हरी अदोख हरी अदवैख हरी अकाल हरी अपार हरी अछेद हरी अभेद हरी अजंत्र हरी अमंत्र हरी सोतेज हरी अतंत्र हरी अजात हरी अपात हरी अमित्र हरी अमात हरी अरोग हरी अशोक हरी अभर्म हरी अकर्म हरी अजय हरि अभय हरि अभेद हरि अछेद हरि अखंड हरि अभंड हरि अडंड हरि प्रचंड हरि अतेव हरि अभेव हरि अजेव हरि अछेव हरि भजो हरि थपो हरि तपो हरि जपो हरि जलस्तुहि थलस्तुहि नदीस्तुहि नदस्तुहि वृक्षस्तुहि पतस्तुहि चितस्तुहि ऊर्धस्तुहि भजस्तुहि भयस्तुहि रटस्तुहि ठटस्तुहि जिमीतुहि जमातुहि मकीतुहि मकातुहि अभूतुहि अभयतुहि अछूतुहि अछातुहि यतस्तुहि व्रतस्तुहि।

तेजू अतेज में अतेज से तेज रे ताहे ते उपज से बताहे मैं समांगे को कत फिरत के ते रोवत मरद के ते जल में डुबद के ते आग में जरत है के ते गंग बासी के ते मदीना मक्का निवासी के तक उदास के भरमाई फिरत है करव सहद के ते भूम में गड़द के ते सुआ पे चढ़द के ते दुख को भरत है ज्ञान में उड़द के ते जल में रहद के ते ज्ञान के बिहीन जग जारी मरत है सुधार देवता बिरुधर धन बड़े बुधारे बुधक प्रबुधारे जापसी घसारे चंदन लगाए हरे चुवाचार पूजा हरे पहन चढ़ाए हरे लापसी गा हरे गोरन मनाए हरे मड़ी मट लीप हरे भितन लगाए हरे छापसी गाय हरे गंधर्व बजा हरे किन्नर सब पच हरे पंडित तपत हरे तापसी तो प्रसाद भुजंग प्रयाद छंद रंग न रंगंग न रूपंग न रेखंग न मोह न क्रोह न द्रोहंग न द्वैखांग न कर्मंग न भर्मंग न जन्मंग न जातंग न मित्रंग न सत्रंग न पितरंग न मातंग न नेहंग न गेहंग न कामंग न धामंग न पुत्रंग न मित्रंग न सत्रंग न भामंग अलेखंग अभेखंग अजोनी स्वरूपंग सदा सिद्धा बुद्धा वृद्ध रूपंग नहीं जान जाए कछु रूप रेखांग कहां वास्ता को फिर कौन भेखांग कहां नाम बता को कहां कह कहव कहां कह बखानो कह मन अव न रूगंग न सुगंग न मोह न मातंग न कर्मंग न भर्मंग न जन्मंग न जातंग अद्वैखंगा भेखंगा जोनी स्वरूपे नमो एक रूपे पर्यंग परापरम प्रज्ञा प्रकाशी अच्छेदंग अच्छेद अद्विनाशे न जातंग न पातंग न रूपंग न रंगे नमो आधा भंगे नमो आधा भंगे किते किशन से कीट कोटे उपाय उसारे गड़े फेर मिटे बनाए अगाध अभय अद्वै अपनासी पर्यंग परापरम पूर्ण प्रकाशे न आदंग न व्यादंग अगाध स्वरूपे अखंड प्रतापाद अक्षय विभूते न जन्मंग न मरणंग न भरभंग न व्याधे अखंडे प्रचंडे अदंडे असाधे न नेहंग न गेहंग स्नेहंग स्नाते उदंडे अमंडे प्रचंडे प्रमाथे न जाते न पाते न सत्र न मित्रे सो भूते भविके भवाने अचित्रे नारायंग न रंकंग न रूपंग न रेखंग न लुभंग न चुभंग अभूतंग अभेकंग न सत्रंग न मित्रंग न नेहंग न गेहंग सदैवंग सदा सर्व सर्वत्र स्नेहंग न कामंग न क्रोधंग न लोभंग न मोहंग न जीवनी अचयाद अजोहंग न जन्मंग न मरणंग न भरणंग न व्याधंग अगुरु न रुगंग न सुखंग अभे निर्विखादंग अच्छेदंग अभेदंग अकर्मंग अकालंग अखंडंग अभंडंग प्रचंडंग अपालंग न तातंग न मातंग न जातंग न कायंग न नेहंग न गेहंग न भरमंग न भायंग न रूपंग न भूपंग न कायंग न कर्मंग न दर्शंग न अपना प्रासंग न भेदंग न भ्रमांग सदैवंग सदा सिद्ध वृद्धंग स्वरूपे नमो एक रूपे निरुक्त प्रमाद अनुक्त प्रतापे अजुक्त अच्छेयाद अव्यक्त अथापे विभक्त अच्छेयाद अच्छे स्वरूपे नमो एक रूपे न नेहंग न गेहंग न सुखंग न साकंग परेंग पवित्रंग पुनीतंग अताकंग न जातंग न पातंग न मितंग न मंत्रे नमो एक तंत्रे न धर्मंग न भरमंग न सर्मंग न साके न भरमंग न चर्मंग न कर्मंग न बाके न सतंग न मित्रंग न रूपतंग स्वरूपे नमो आद रूपे कहूँ कांज के मांज के भरम भूले कहूँ रंग के राज के धर्म अलूले कहूँ देश के भेष के धर्म धामे कहूँ राज के साज के बाजेता में कहूँ अक्षर के पत्र के सिद्ध साधे कहूँ सिद्ध के बुद्ध के ब्रज लादे कहूँ अंग के रंग के संग देखे कहूँ जंग के रंग पेखे कहूँ धर्म के कर्म के हरम जाने कहूँ धर्म के कर्म के भर्म माने कहूँ चार चेष्टा कहूँ चित रूपा कहूँ परम प्रज्ञा कहूँ सर्वभूपांग कहूँ नेह ग्रह कहूँ देह दुखा कहूँ औखदी रोग के सुख सुखांग कहूँ देव विद्या कहूँ दैत पानी कहूँ यश गंधर्व किन्नर कहानी कहूँ राशि साथ की तामसी हो कहूँ जोग विद्या धरे तापसी हो कहूँ रोग हरता कहूँ जोग जुगतांग कहूँ भूम की भुगत में भ्रम भुगतांग कहूँ देव कन्या कहूँ दानवी हो कहूँ जश विद्या धरे मानवी हो कहूँ राशि हो कहूँ राज कन्या कहूँ सृष्ट की पृष्ठ की रिष्ट कन्या कहूँ वेद विद्या कहूँ बोम बानी कहूँ को की गाव कथा कहानी कहूँ अद्र सारंग कहूँ भद्र रूपांग कहूँ मदर बानी कहूँ छत स्वरूपांग कहूँ वेद विद्या कहूँ काव रूपांग कहूँ चेष्टा चय चितरंग अस्वरूपांग कहूँ परम पुराण को पार पावे कहूँ बैठ कुरान के गीत गावे कहूँ सुध शेखंग कहूँ परम पर धर्मांग कहूँ वृद्ध अवस्था कहूँ बाल कर्मांग कहूँ ज्वाल स्वरूपंग जरा रह देह कहूँ नेह देह कहूँ त्याग गृहंग कहूँ जोग भोगंग कहूँ रोग रागंग कहूँ रोग हरता कहूँ भोग त्यागंग कहूँ राज सजंग कहूँ राज रीतांग कहूँ प्रेम पूर्ण प्रज्ञा कहूँ परम प्रीतांग कहूँ आरबी तोर की पारसी हो कहूँ पनवी पस्तवी संस्कृति हो ओ देश भाक्या कहूँ देवानी कहूँ राज विद्या कहूँ राजधानी कहूँ मंत्र विद्या कहूँ तन सारा कहूँ की यंत्र रीतंग कहूँ शत्र धारंग कहूँ पूजा कहूँ देव अर्चा कहूँ पिंगला चरण गीत चर्चा कहूँ बीन विद्या कहूँ गान गीता कहूँ मनीष भाक्या कहूँ वेद रीतंग कहूँ नृत्य विद्या कहूँ नाग बानी कहूँ गाड़ू गढ़ कथा कहानी कहूँ अक्षरा पक्षरा मच्छरा हो कहूँ बीर विद्या अभूतंग प्रभा हो कहूँ छैल छाला धरे छत्रधारी कहूँ राज सजंग धीराजा अधिकारी
ਕਰੀਮ ਨਮੋ ਨਾਥ ਪੂਰੇ ਸਦਾ ਸ਼ਿਦ ਦਾਤਾ ਅਛੇ ਦੀ ਅਛੇ ਆਦ ਅਦਵੈ ਵਿਧਾਤਾ ਨਾ ਤ੍ਰਸਤੰਗ ਨਾ ਗ੍ਰਸਤੰਗ ਸਮਸਤੰਗ ਸਵਰੂਪੇ ਨਮਸਤੰਗ ਨਮਸਤੰਗ ਤੁਵਸਤੰਗ ਅਭੂਤੇ ਤੋ ਪ੍ਰਸਾਦ ਪਾਦੜੀ ਛੰਦ ਅਭਿਆਕਤ ਤੇਜ ਅਨੁਭਵ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਅਛੇ ਸਰਬ ਅਦਵੈ ਆਪਣਾ ਅਨਾਸ ਅੰਤੁੱਟ ਤੇਜ ਅਨਖੁੱਟ ਭੰਡਾਰ ਦਾਤਾ ਦੁਰੰਤ ਸਰਬੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ ਅਨੁਭੂਤ ਤੇਜ ਅੰਸ਼ ਜਿਕਾ ਕਰਤਾ ਸਦੀਵ ਹਰਤਾ ਸਨਾਤ ਆਸਨ ਅਡੋਲ ਅਨੁਭੂਤ ਕਰਮ ਦਾਤਾ ਦਿਆਲ ਅਨੁਭੂਤ ਰਾਮ ਜੇ ਸਤਰ ਮਿਤਰ ਨੇ ਜਨਮ ਜਾ ਜੇ ਪੁੱਤਰ ਭਰਾਤ ਨੇ ਮਿੱਤਰ ਮਾਤ ਜੇ ਕਰਮ ਭਰਮ ਨੇ ਧਰਮ ਧਿਆਨ ਜੇ ਨੇ ਗੇ ਨੇ ਵਿਉਤਮਾਨ ਜੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੇ ਸਤਰ ਮਿੱਤਰ ਜੇ ਨੇ ਗਏ ਨੇ ਚੈਨ ਚਿੱਤਰ ਜੇ ਰੰਗ ਰੂਪ ਨੇ ਰਾਗ ਰੇਖ ਜੇ ਜਨਮ ਜਾਤ ਨੇ ਭਰਮ ਫੇਗ ਜੇ ਕਰਮ ਭਰਮ ਨੇ ਜਾਤ ਪਾਤ ਨੇ ਗਏ ਨੇ ਪਿਤਰ ਮਾਤ ਜੇ ਨਾਮ ਥਾਮ ਨੇ ਬਰਗ ਬਿਆ ਜੇ ਰੋਗ ਸੁਖ ਨੇ ਸਤਰ ਸਾਧ ਜੇ ਤਰਾਸ ਵਾਸ ਨੇ ਦੇਹ ਨਾਸ ਜੇ ਆਦ ਦੰਤ ਰੂਪ ਨੇ ਰੂਪ ਰਾਸ ਜੇ ਰੋਗ ਸੁਖ ਨੇ ਜੋ ਜੁਗਤ ਜੇ ਤਰਾਸ ਆਸ ਨੇ ਭੂਮਭੁਗਤ ਜੇ ਕਾਲ ਬਿਆਲ ਕੱਟਿਓ ਨਾਂਗ ਅਛੇ ਸੁਰ ਅੱਖੈ ਭੰਗ ਜੇ ਨੇਤ ਨੇ ਦੁਚਰੰਦ ਬੇਦ ਜੇ ਅਲਖ ਰੂਪ ਅਕਥਤ ਕਤੇਵ ਜੇ ਅਲਖ ਰੂਪ ਆਸਨ ਡੋਲ ਜੇ ਅਮਿਤ ਅੱਛਾ ਤੋਲ ਜੇ ਧਿਆਨ ਕਾਜ ਮਨ ਜਨ ਅਨੰਤ ਕੇ ਕਲਪ ਜੁਗ ਸਾਧਨ

ब्रह्म सुब्रह्म यज्ञ होत के देव धरा करम एकरत वीर विद्या विचार ने तद तस पाए तन पार हो राजनीत को योग धर्म के सिमर शास्त्र चल शुभ करम न्यूरी आद करम को हस दान को अस्म मेद मक्को बखान पूज करत ब्रह्म विद्या विचार को योग रीत को बिद चार को करल जे सिकंदर बगान के धूप दीप को अर्घ दान कहो पितृ कर्म को वेद रेत कर कहो नृत्य नाच को गान गीत कहो कर शास्त्र विचार के भज एक पग निराधार कह नेह दे गई के वास के भ्रमत देश देश उदास कह जल निवास के अगन ताप कह जपत उर्द लटकंत जाप कई जप जो कल्पन प्रजात नहीं तदपास पाए अंत कई करत कोड विद्या विचार नहीं तदप दुष्ट देखे मुरार बिन भगत सकत नहीं परत पाए बहु करत हुम अर जगदान बिन एक नाम एक चितलीन फोकटो सर्व धर्मा बिहीन तो प्रसाद तो टक छांद जय जम्प हो जुगण जूहंग भय कंप मुर पयाल पुयांग तब तापस सरब जरे रुथ लांग तनु जर इंद्र कमे रुब लांग अन खेद सुरु अभेद अभियांग अन खंड अभूत अच्छे अच्छियांग अन काल अपाल दयाल स्वंग जे ठटेंग मेरा कास भुआंग अन खंड अमन प्रचंड रंग जे रचे देव अदेंग बरांग सब कीनी दीन जमीन जमा जे रचियंग सर्व मकीन मका जे राग न रूप न रेख रुखांग जे ताप न साप न सुख सुखांग जे रोग न सोग न भोग भुयांग जे खेद न छेद न छेद छियांग खेदना भेदना छेद छ्यांग ये जातना पातना माति पितांग जे रचेंग छत्री छत्र छितांग ये रागना रेखना रोग भणांग जे द्वैखना दाखना दोगणांग ये अंडते ब्रह्म रचियो दस चार कर नवखंड सचियो रच तामस तेज तेज कियो अनुभव पद आप प्रचंड लियो जे सिरे सुंदर बिंद नगे नगंग जे जच्छ गंधर्व गुण फणित भुजांग रच देव देव उभय नरंग नरपाल नृपाल कराल त्रिगांग के कीट पतंग भुजांग नरंग रच अंडज सेतज उत भुजांग किए देव देव श्रादि पितंग खंड प्रताप प्रचंड गतंग रव जातन पातन यो जुदा जिदंग जे तातन मातन प्राप्त सुतंग ये रोग न शोक न भोग भुवांग जे जम पै किन्नर जज जुवांग नर नार न पुसक जाए के करण किन्नर जाच भुजांग दिए गज बाज अर्थाधिक पांत गणांग भव भूत भयग भवान तुवांग जे अंडज शेर जे उत भुजांग रज भूम काश पताल जलांग रज पावक पवन प्रचंड बलि बंजास कियो फल फूल कली भू मेर काश निवाचितंग रज को रोज एकादश चंद्र वृतांग दुत चार चतुर्दश चक्र फिरांग जे राग न रंग न रेख रुगांग जे शोक न भोग न जोग जुगांग वो भंजन गंजन आसिरंग जे बंद देव देव निरंग गण किन्नर जच भुजंग रचे मन मानंग मति लाल सुचे अन भंज प्रभा अन गंज प्रतंग जे पार न पाव पूर मतांग अनखंड सुर अंडन प्रभा जे जिमपद वेद पुराण सभा जे वेद कते बनंद कह जे भूत अभूत ना भेद लह जे वेद पुराण कते जप सुत सिंध अधो मुख ताप तप के करपन लो तप ताप करन नायक त्रिपुराज पान पर जे फोकट धर्म सब बझ एक चित्त कृपाने को जप है ते या भव सागर कोतर है वह भूल ना देह पुनर्दर है एक नाम बिना निकोड़ प्रति इम वेद उचार सास्ती जो वारस के चस्के रस है ते भूल ना काल फंदा फस है तो प्रसाद नराज छंद अगंज आद देव है भंज भंज जानी अभूत भूत हसदा गंज गंज मानिया अदेव देव हसदा भेव भेव नाथ है समस्त सिद्ध वृद्धा सदीव सर्व साथ है अनाद नाथ नाथ है भंज भंज हसदा अगंज गंज गंज सदीव सिद्ध वृद्धा अनूप रूप स्वरूप है अच्छी तेज मानिया है सदीव सिद्ध सुधिदात प्रताप पत्र जानिया है राग रंग रूप है न रुख राग रेख है अदोख अदाग अदग है अभूत अभ्रम अभेक है न तात्मा जात न पाच्य न वरण है अधेक असेक अभेक है सदैव विश्वभरण है विश्वमर विश्वनाथ विशेष विश्वभरण है जिमी जमान कैब कह सदैव कर्म भरम है अधवेख है अभेक है लेख न जानिया है सदैव सर्व धर्म विशेषा न मानिया है न जंत्र में न तंत्र में न मंत्र बस आवई पुरानो पुरान नेत नेत के बतावई न कर्म में न धर्म में न भ्रम में बताइए अगर ज्ञात देव है कहो सुख है सपाई है जिमी जमान कैब कह समस्त एक ज्योत है न घाट है न बाढ़ है न घाट बाढ़ होते हैं न हन है न बन है समान रूप जानिया मकीनो मकान प्रमाण तेज मानिया न देह न गेह न जात है न पात है न मंत्र है न मित्र न तात है न मात है न अंग है न रंग है न संग है न साथ है न दुख है न दाग है न द्वेख है न देह है न सिंह है न स्यार है न राव है न रंग है न मान

अभूम अभिज है सदा चिर तेज मानिया है, नाद है न ब्याधे अगाध रूप लेखिया है, अदुख है अदाग है अच्छे प्रताप लिखिया है, न कर्म है न भ्रम है न धर्म को प्रभाव है, न जंत्र है न तंत्र है न मंत्र को लाभ है, न छल है न छिद्र है न छिद्र को स्वरूप है, अभंग है अनंग है गंजसी विभूत है, न काम है न क्रोध है न लोभ मोह कार्य है, न आद है न गाध है न ब्याध को विचार है, न रंग राग रूप है न रूप रेख रार है, न हाव है न भाव है न दाव को प्रकार है, गजाधपि न राधपि करंत सेव है सदा, सितस्पति तपस्पति वनस्पति जपसदा, अगस्त जे बड़े तपस्तपि विशेखिया, बेअंत बेअंत बेअंत को करंत पाठ पेखिया, अगाध याद देव की अनाद बात मानिया, जात पात मंत्र मित्र सत्र सने जानिया, सदैव सर्व लोक की

रूप राग न रेख रंग न जन्म मरण विहीना आ नानक आदि पुरुष धर्म परम करम प्रवीणा जंत्र मंत्र तन जाको आदि प्रक अपार हस्त किट बिखै बसै सब ठौर मन निर्धार जात पद ता जाको मंत्र मातना मित्र सर्व ठौर बिखै रमे ओ जे चक्र चन चित्र आद आदि उदार मुद आगाद नाथ अनंत आदंत न जानी अभिखा देव दुरांत देव गुण जानी जक मनम वेद कतेव सरा को सन केस नंदन पावई न सेव जच किन्नर मच्छ मानस मुर्ग उर्ग अपार नेत नेत पुकारे शकर अमुचार सर्व सबद पतार के तर जापी जय जाप आद गाते अनाद मृत ताप जंत्र मंत्र आवई कर तंत्र मंत्र कीन सर्व ठोर रहो विराज धीराज राज प्रवीण जच गंधर्व देव दानो न ब्रह्म क्षत्रिय माहे वैष्णव के बिखब राज सुधर भी वह नाहे गुड़ गौर न भील भी कर ब्रह्म से एक स्वरूप रात दिवस न मद उड़द न भूमिका स्वरूप जा जन्म न करण काल कर्म न धर्म कर्म विहीन तीर्थ जात्र देव पूजा गोर के न अधीन सर्व सबद पतार के तर जान जय ज्योत शेष नाम संस्पन्न नेत पूरन होत सो सुध हटे समय स्वर विरोधानो सर्व गाय गा हटे गंधर्व गवाय किन्नर गर्भ पड़त पड़त के महाकव गड़त गड़ अनंत हार हार कहो सब मिल नाम नाम दुरांत वेद भेद न पायो रखियो न जे सेवकते देवदान मुड़वान जचन जाना जेव भूत भव भवान भूपद आदनाद नाथ अगन बाजले थले मह सर्व ठौर निवास दे श्रद्धाता सर्व ज्ञाता सर्व भूको भरन दुष्ट गंजन सत्र भंजन परम पुरुष प्रमाथ दुष्ट हरता सृष्ट करता जगत में जगात भूत भव भविक भवान परमा देव गंज आद अंत अना श्री पद परम पुरुष भंज धर्म के अन करम जे तकीन तोन पसार देव देव गंधर्व किन्नर मच कश अपार भूमका जले थले मह मानिए जय राम दुष्ट हरता पुष्ट करता सृष्ट हरता काम दुष्ट हरना सृष्ट करना दयालाल गोविंद मित्र पारक सदर घालेगे

भरता सर्व के अनकाम सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व के निभाम सर्व भोगता सर्व युक्ता सर्व कर्म प्रवीण सर्व खंडन सर्व दंडन सर्व कर्म अधीन सर्व सिमर शास्त्र शास्त्र सर्व वेद विचार दुष्ट हर्ता विश्व भरता दुर्पार दुष्ट दंडन पुष्ट खंडन आदि खंड भूमिका जले थले महेश जाप अकमंड श्रेष्ठ चार विचार जते जानिए सब चार आद्य अपासरी दुष्ट पुष्ट प्रहार अन्नदाता ज्ञान ज्ञात सर्पमान महेंद्र वेद व्यास करे कई दिन कोट इंद्र उपेंद्र जन्म ज्ञाता कर्म ज्ञाता धर्म चार विचार वेद भेव न पावई शिव रुद्र अमुख चार कोट इंद्र उपेंद्र व्यास नग सनत कुमार गाय गाय थके सब गुण चक्रत भे मुख चार आदंत मद जाको भूत भगवान सद्वर तृतीया कलयुग छत्र काल प्रधान ध्या ध्या थके मामन गाय गंधर्व अपार हार हार थके सबने पाइये तह पार नारद आदक वेद व्यासक मुन महान अनंत ध्यान ध्यान थके सब करकोट।

चिचरासुर मारण पतित उधरण नरक निवारण गूढ गटे अच्छे खंडे तेज प्रचंडे खंड उदंडे अलख मते जय जय सीमा कासुर मर्दन राम कपर्दन छात्र छिते आसुर बिहंडन दुष्ट निकंदन पुष्ट उदन रूपते चंडासुर चंडन मंड बिहंडन धम्र बिनसुन मैख मते दान प्रहार नरक निवारण अधम उदार उड़दा दे जय जय हो सीमा कासुर मर्दन राम कपर्दन आदि बिते डावर डवंके बबर भवंके भुजा फरंका तेज बरंग लंगुड़िया फादे आयुध बादे सन बिमर्दन काल सुरंग अष्टायध चमके भूखंड दमके असिंह चमके फंग फनांग जा जा वसी मैं कासन मर्दन राम का प्रदन दया जिनांग चंडासुर चंडन मुंड बिमुंड खंड खंड खून कते दामनी तमकंड सजा फरंकंड फणी फुकान जो जीते सरदार बिबखंड दुष्ट प्रखंड पुष्ट प्रखंड दुष्ट मथे जा जा वसी मैं कासन मर्दन भूम आकाश तल उर्ध अधे दामनी प्रहासन सुशाबन निवासन धृष्ट प्रकाश

चचरासर नरक निवारण अपति उद्धारण एक फटे पापान बहन दुष्ट प्रचंड अखंड अखंड काल कटे छिंदारण चार नक निवारे पति उधारे मुंड मथे जय जय वसी मकासुर मर्दन धूम्र बिंदुसन आदि कथे रक्तास मर्दन चंड चक्रदन दान वर्दन बिड़ाल बधे सरदार बिबखण दुर्जन धरकण अतुल अमरखण धरम दुजे धूम्रा बिंदुसन थ्रोण चुन

है ऊंच नीच किनो बनाओ सवार पर जा को प्रभाव सब जीव जन जानत माहे जाहे मन मूड़ क्यों न सेवंत ताहे हे मूड़ पत्र पूजा करांत कैसे साथ पूजा सूरज शिवंत हे पलट सूरज सिद्धा कराए प्रभे गुरु द्वा कह लखाए अन चीते जन वे प्रकाश दाता द्वंत द्व अनाश सब रोग सुख तेरा रूप अन भय काल अच्छा स्वरूप करुणा निधान का मन कृपाल दुख दोख हरत दाता दयाल अंजन बीन अन भजनाथ जल थल प्रभाव सर्वद्र साथ ये जात पात ने भ्रम भेद भ्रम ये रंग रूप ने एक धर्म ये सत्र मित्र दो एक सार अच्छा स्वरूप अब जल

दाहत है दुख दुखन को दल दुजन के पल में दल डारा खंड खंड प्रचंड पहरन पूरन प्रेम की प्रीत संभारा पारन पास गए पद्मापत वेद कत अभेद उचारा रोज ही राज पुलोकत राज करो खुरुहान की रोजी ना टारा कीट पतंग कुरंग भुजंग भूत भविक भवान बनाए देव देव खपे अहं में उन भेव लिखियो ब्रह्म सिंह भरमाए वेद पुराण कतेव कुरान हसे बथके कर हाथ नाए पूरन प्रेम प्रभाव बिना पद सिंह किन श्री पद मापत पाए आद अनंत अगाध द्वैक्ष भूत भविक भवान अभा अंत विहीन अनात्म आप अदाग अदोग अशिद्र शह लोगन के करता हरता जल मय थल मय भरता प्रभु वह दीन दयाल दया कर श्रीपत सुंदर श्री पद्मापत ए है काम न क्रोध न लोभ न मोह न रोग न शोक न भोग न भय देह विहीन सने सबोतन नेह विरागत अगे छह जान को देत अजान को देत जमीन को देत जमान को दह काहे को डोलत है तुम सुंदर श्री पद्मापत लह रोगन ते यार सोगन ते जल जोगन ते बहु बांध बचाव शत्रु अनेक चलावत घाव तो

जाच भुजंग सुदानव देव अभेद तुम्हें सभी कर जावै भूमि काश पताल सात्र जाच भुजंग सबैसर न्यावै पाए सके नहीं पार प्रभाहु को नेत ही नेत वेद बतावै खोज थके सभी खुजिया सुरहार परे हरिहाथ नावै नारद से चतुरानन से रुमनारिक से समूह मिल गायो वेद गते अपना भेद देखियो सबहार परे हरिहाथ नायो पाए सके नहीं पार मापत सिद्ध सनाद सनातन ध्यायो ध्यान धरो तह को जग में जे को मितो जे सब जग छायो वेद पुराण कते पुराण भेंद्र पान सब पचहारे भेद न पाय सके न भेद को खेद तहन छेद पुकारे राग न रूप न रेख न रंग न साग न सोग न सांग तिहारे आद अनाद का तद भेख अद वैग जी पोते नहीं गुण तारे तीरथ कोट किए स्नान दिए वो दान महाव्रत धारे देश प्रयोग कर भेष तपोधन केस धरे न मिले हारे प्यारे आसन कोट करे अष्टांग धरे भोने आस करे मुख कारे दीन दयाल का

अत्र के चलैया छत छात्र के धरैया छत्रधारियों के छलैया महासतरन के साल है दान के दबिया महामान के बढ़ैया अवसान के दबैया कटैया जाम जाल है युद्ध के जतैया विरुद्ध के मिटैया महाबोध के दबिया महामान हो के मान है ज्ञान हो के ज्ञाता महासुबुद्धता के दाता देव काल हो के काल महाकाल हो के काल है पूरी बिना पार पवे हिंगला हिमालय धावे गुर गर्दे जी गुण गावे तेरे नाम है युग युग साधे पवन साधना के तेग पादा अरब के अरबी अराध तेरे नाम है फरा के फरंगी माने कंधारी कुरे से जाने पश्चिम के पश्चिमी पछाने जी काम है मरहटा मंगे तेरी मानस तपस्या कर निर्भय तिलंगी पहचाने धर्म धाम है बांगे बंगाली फिर हांगे फिरंगा वाली दिल के दिल वाली तेरी आगे में चलते हैं रोह के रोहेल मांग देश के मंगेली वीर बांग सी बुंदेले

देव देवतान को सुरेश दान वान को महेश गंग धान को अभेश कही यत है रंग में रंगिंग राव रूप में प्रवीण हो कहो पैना दीन सात अधीन कही यत है पाई न पार तेज पुंज में पार सर्व विद्या के उदार अपार कही यत है हाथी की पुकार पले पाछे पहुंचत ताहे चिट्ठी की सिंगार पहले ही सुनियत है। कहते इंद्र द्वार कहते ब्रह्मा मुख चार कहते कृष्णा अवतार कहते राम कही यत है कहते ससराशी कहते सूरज प्रकाशित कहते मुंडिया उदासी संयोग द्वार कही यत है कहते महादीन कहते व्यास प्रवीण कहते कुमेर कुलीन कहते जश कही यत है करते हैं विचार पना पूरन को पवे पार तही ते पार निराधार नहीं यत है पूरन अवतार निराधार है न पार अवार पाइये न पार के बखानिया है अद्वे मनसी पर पूरन प्रकाशी महारूप के राशि अनाशिका के मानिया जा तरुण जा की बाप हूं नमायता की पूर्ण प्रभा की सुछटा के आने मानी है तेज को तंत्र है के राशि को जंत्र है के मोहन को मंत्र है नि चंद्र का जानी है तेज को तर है के राशि को सर है के सुरता को घर है के सीता की सार है कामना की खाने के साधना की सान है वृद्धा की बाना के बुद्ध को उदार है सुंदर स्वरूप है के भूपन का भूप है रूपों को रूप है कुमत को प्रकार है दीनन को दाता है गनीमन को कारक है साधन को रक्षक है गुणन को उपहार है सिद्ध को स्वरूप के बुद्ध को विभूत के कृत को अभूत के अच्छे अभिनाशी है काम को गुरिंदा है के खूबी को दिहंदा के निमन गरिंदा के तेज को प्रकाशी है कानों के कान के सदन के साल है के मित्र को पुकत है विद्या की बासी है जो गुण जंत्र है के तेज को तंत्र के मोहनी को मंत्र के पूर्ण प्रकाशी है रूप को निवास है के बुद्ध को प्रकाश है के सीता को बांस के बुद्ध को घर है देवन को देव निरंजन अभिव है देवन को देव के सुता को सर है जान को पचया है ईमान को दिवया है जम जाल को कटैया के काम न को करे है तेज को प्रचंड के खंडन को खंड है महेपुर को मंड के स्त्री है ना नर है विश्व को भरण के आपदा को हरण है के सुख को करण है के तेज को प्रकाश है पाइये न पार पर वारु को पार जा को खींचे विचार सो प्यार को निवास है हिंगला हिमालय गावे हबसी हलक विध्या पूर्व न पार पवे आसत अनाश है देवन को देव महादेव का देव है निरंजन अभिनाथ अभिनाशी है अंजन विहीन निरंजन प्रवीण के सेवक अधीन कटे जाम जाल के देवन के देव महादेव के देवनाथ भूम के भजिया है महा मुहिया महाबाल के राजन के राजा महासाज के साजा महा जोग को जोग है धरिया धर्म छाल के कामना के करें के भुत्ता को हरें के सीता की साथी है के काल है कुचार के शीर कैसी शीरावत छास कैसी छत्रानेर छप्पा कर कैसी छप कालिंद्र के कूल के हंस सियारुम हीरा सी हुसैनाबाद गंगा कैसी धार चली सातो सिंध रूल के पारासी पलाऊ गढ़ रूपा कैसी रामपुर सूरा सी सुरंगाबाद ने के रही झूल के चंपा सी चंदेरी कोट चांदनी सी चावा कीर्ति तिहारी रही माल तीसी फूल के फटक सी कैलाश कमाऊ गढ़ कांसीपुर सीसा सी सुरंगाबाद निके सोहियत है हिमा सी हिमालय हर हर सी हल्ला बानेर हांस कैसी हाजीपुर देखे मोहियत है चंदन सी चंपावती चंद्रमा सी चंद्रागिर चांदनी सी चांदागढ़ जोन जोहियत है गंगा सर दम धम धार बकानसी बुलंदाबाद कीर्ति तिहारी की उजियारी सोहियत है फरासी फिरंगी फरासी के दुरंगी मकरान के मृदंगी तेरे गीत गाई यत है भखरी कंधारी गोर गखरी कर दिया चारी पौन के हरी तेरो नाम ध्याई यत है पूरे पलाव काम रूपो कमाऊ सर्व ठारे बिरज जहां जहां जाई यत है पूरे प्रतापी

चक्र चिन्ह अर वर्ण जात अर पात नहन जह रूप रंग अर रेख भेख को कह ना सकत केह अचल मूर्त अनुभव प्रकाश।

कहा चौपाई सम सत्रह सहस भणी जय अर्ध सहस हुन तीन कहे जय भादव सुदी अष्टमी रवारा तीर सत द्रव ग्रंथ सुधारा

मन क्रम बचन बिचार चौपई मन आगने सह प्रथम मनाऊं किशन बिशन कब हो नह ध्याऊं कान सुने पहचान नतन सो लव लागी मोरी पग इन सो

दास तिहारा जान आप नाम मुझे नवाज आप करो हमरे सब काज तुम हो सब राजन के राजा आपी आप गरीब नवाजा दास जान कर कृपा करो मुहार पर मैं आम द्वार तुहे अपना जान करो प्रतपारा तुम साहिब मैं किंकर थारा दास जान दे हाथ उबारो हमरे सब वैरिन संघारो।

सुरु न्याय पंथ चले तब जगत में जब तुम करो सहाय दोहरा जी जी तुमरे ध्यान को नितुड़ ध्यान है संत अंत लेंगे मुक्त फल पावेंगे भगवंत दोहरा तिन बेदियन की कुल बिखै प्रगटे नानक राय सब सिखण को सुख

सात संगत जी गुरु साहिब जी का लंगर तैयार है, प्रशादा छक के गुरु महाराज दियां खुशियां प्राप्त करो जी। बोले सो निहाल।

पौड़ी सेव की संतोखी जिन सतु सच त्याया ओने मंदा पैर न रखियो कर सुकृत धर्म कमाया ओने दुनिया तोड़े पंदना अन्न पाने थोड़ा खाया तू बख्शिश अगला नित